0: दिया पानी दिया पूरिया पूरी ऊपर तक पानी दिया दो तीन बाल्टियां भरी हुई हूं कवर जिकर भी बड़ी सी नहाई थी सवेरे सवेरे यार
1: छोटा जा घर है छोटा दरवाजा खोलने फिर भी इतना टाइम लगता
0: सीसीटीवी ते फुटेज देख लिया सी मैं
1: क्यों
0: सिक्योरिटी विच समझदारी है मैडम
1: पहला ये दसो तुसी आ हेलमेट क्यों पाया
0: ए ये तो मैं सिक्योरिटी चेक प्लस की थी है
1: चेक प्लस
0: जी जोड़ प्लस
1: पहला ये दसो तुसी हो कौन
0: मैं तुसी मैं नहीं जानते कमाल है एक मिनट खड़ो मैडम मैं मजनू हूं मैडम Yes,
1: ਲੈਲਾ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੀ
0: ਲੋ ਜੀ ਥਰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ